0: connect your dream, connect your future, stay, connect your heart.
1: Connect Australian Education and Media Services. शिक्षा गंदगी चार पूरी होगा वाचिंग डिपार्टमेंट भवन संगई मोबाइल अंतर्गत पांच साथी 32 चार सिक्स तिरंगे और अंतर्गत पांच साथी 38 तिरंगा

0: कांग्रेस महानिर के नतीजे अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय संबंधन प्राप्त भानुभक्त बहुमुखी कैंपस बेल चौतारा में शैक्षिक सत्र 2083-84 का लगी मानव संसार व्यवस्थापन संकाय में स्नातक तह प्रथम वर्ष में अंग्रेजी र नेपाली दुवै माध्यम में भर्ना खुल्यो।
1: समयमै भर्ना भई आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नुहोस्।
0: हाम्रा विशेषताहरू वर्षौंदेखि गण्डकी प्रदेशमा नै उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल जनस्तरबाट सञ्चालित न्यून शुल्क
1: अध्यापक
0: भीमा ढुङ्गेन्दी, ऋषिङ गिरिङ र हरिनाथ गाउँपालिका भित्रका विद्यालय

0: radio cooperativa Banga, dan yang di sana kita berada. Ibu tidak nak, tapi tanpa dia jadi tadi pun, ada tadi pun sama lagi satu dia. Orang pas pada itu, ini tidak nak. Tadi kita tidur.
1: Ya, tetapi kita harus bersih.
2: Design.
3: आयुर्वेद डाक्टर विवश बास्तुला द्वारा आयुर्वेद मौलिक पद्धति विभिन्न रोग सफल उपचार
4: आयुर्वेद औषधि आयुर्वेद थेरापी एवं अनुभवी आयुर्वेद डाक्टर द्वारा उपचार होने रोग
3: पेट संबंधी समस्याहरू गैस्ट्रिक वायुगोला कब्जियत अरुचि पेट दुख्ने पोल्ने अमिलो पानी आउने जस्ता समस्या
4: आइल्स फिसर फिस्टुला बेरो फर्कने र पीएनएस को सफल उपचार
3: पिनास नाकको एलर्जी नाकमा मासु पलाएको
4: मृगौलाको पत्थरी पिसाब पोल्ने प्रोस्टेट सम्बन्धी समस्या
3: स्त्री तथा प्रसूति रोग महिनावारी गडबडी सेतो पानी बग्ने निसन्तान तथा यौन दुर्बलता पीसीओडी

बोलती हूँ। टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुनचारी प्रसाद चौड़ा है पोस्ट आपने भवन में।

0: 할라 언니.
1: 나 맞다.
0: 가스리 할라 언니. 너 들어보게. 나 이래 돼.
1: 맞아.
0: 아, 나리 사우나 미띠니쥬, 나리 사우나 미띠니쥬, 그때 마가리딘 주 맞다쥬쥬. 우바다바레다. आदिबेरी संग लड़ दे ऐंदा खोला ना दी सागर तर दे दुख पीड़ा बिरसी दे मा आए परदेश बात फरकी आए ऐना दा अल्लाह आए लह ए बात सही अब मेरे पति तभी को से एक पालो अनि हमी जाए छुट्टी नु पर्छ है दा अल्लाह ए बात सही के चाहिँ गाउने होला त ए

0: 103.8 अन्तर्मन को आवाज
1: स्टूडियो लाइन अहिले रातिको 8 बज्यो
2: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस्ट चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना र राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो कर गहना नया गहना संग साठ फेर पनी प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301

0: Studio Tanchen.
1: अहिले बिहानको 5 बज्यो।
2: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्प चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना र राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो कर गहना नया गहना संग साठ फेर पनी प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301।